0: जगजीत सिंह।
1: गजल का एक और दौर शुरू होता है, पंजाबी गायकी का दौर, जिसमें नॉलेज ऑफ म्यूजिक उभर के आता है, वो है गुलाम अली का दौर। गुलाम अली की गजल में आप देखेंगे कलाम के साथ साथ उनका जो नॉलेज ऑफ म्यूजिक है, उनका जो रियाज है, उनका जो सरगम है, उनकी जो मुर्कियां हैं, उसका भी उतना ही इस्तेमाल वो करते हैं जितना वो अच्छे कलाम करते हैं। सुनने वाले के लिए बहुत ही इंजॉयमेंट वाली चीज़ है, और खास करके मैं तो इसे बहुत पसंद